0: बता दूं? वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल.

साल नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल
1: कोक स्टूडियो सीजन 9

0: लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: I'm sorry.
2: क्या कहा आपने?
1: I'm sorry. मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया.
2: कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं. बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं.
3: Yo, what up? This is Big Snoop Dogg. Represent that Punjabi. Hey, y'all, hit 'em with this.

0: Real cool.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

तेरे दोनों कान आज भर रहा हूं, तुझे शिव के द्वार पर कर रहा हूं। सुन, जो डमरू में गूंजे वो स्वर नहीं, स्वयं महादेव की पुकार है।

राजनी हो, सादिसी हो, आशिकी हो, मुझे पता है तुम किस गली हो, किस मोहल्ले जात की हो, मुझे पता है तुम खुश नहीं हो, दिखती तो आजाद भी हो, पर दुनिया तो तुम्हीं से चलेगी, मैं एक लड़का हूँ, तुम मेरे बाद भी हो।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज जूल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना,
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: इस रक्षाबंधन दीजिए एक अनमोल तोहफा जो सदा रहे अपनी बहन के दिल के पास। दिस रक्षाबंधन शॉप फ्रॉम आवर डिजाइनर कलेक्शन ऑफ गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी राज ज्वेल्स बंसल ग्रुप।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट फ्लेवरफुल समोसा चाट टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स
2: प्लानिंग योर बर्थडे वेडिंग ग्रेजुएशन पार्टी कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM। पक्का देसी, पक्का लोकल।

पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: ऐ मनचली हवाओ जब बादलों में जाओ, ऐ मनचली हवाओ जब बादलों में जाओ, कहना के वहां बरसो बस्ती जहां जली है। खातिनो हजरात, कुदरत अपना काम करती रहती है और दुनिया अपना काम कर रही है, फिर भी एक मौके पर दुनिया को कुदरत के सामने झुकना पड़ता है। वी आर योर होस्ट सफरोज ताज, जान कॉलवेल एंड रवि चिरिकुड़ी। 10 से 12 सुबह, 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एंड दिस इज गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश।
1: You are listening to Geet Bazaar on Radio Naira 101.9 FM with new double broadcasting power. Also 99.9 HD4 and 1490 AM Raleigh Durham.
2: And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from any

0: where on your phone and other devices, the Radio Nair app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
1: और अब मैं कहूंगा कि ज्योति करीर साहिबा, क्यों नहीं आप अपनी फरमाइश सुनवाएं मॉरिसविल नॉर्थ कैरोलिना से। हालांकि हर तरफ है कुदरत पे जवानी, समात फरमाएं कि हालांकि हर तरफ है कुदरत पे जवानी, पर इश्क है तुम्ही से ए जाने जिंदगानी। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

एक जमाने में जिया था वो जीना भी नहीं याद, एक जमाने में जिया था वो जीना भी नहीं याद, मैखाना तो मैखाना पीना भी नहीं याद। खातिनों हजरात, गुलशन बावरा का कलाम, जो कॉमेडी भी करते थे फिल्मों में, कभी कभी मौसीकी थी कल्याण जी आनंद जी की, फिल्म का नाम विश्वास, 1969 की ये फिल्म थी। क्या बात है, बहुत खूब। एक जमाना बीत, मनहर उदास की आवाज थी और साथ में सुमन कल्याणपुर। समृद्धि ठाकुर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फरमाइश सनाखों पर। और अगली फरमाइश है पिंकी कामत की। जी वाह, पिंकी कामत साहिबा ने फरमाइश भेजी है सिंसिनेटी ओहायो से, रविंद्र उपाध्याय की आवाज और साथ में मधुमिता बाला। फिल्म भी बड़ी अनयूजुअल है, फिल्म का नाम है हीर सारा, 2026 की ये फिल्म है, यानी बड़ी अभी की फिल्म है। खरामा जिंदगी है वालेहाना, शकील बदायूनी का कलाम, मैं सोचता हूँ यहाँ पर जाएगा कि खरामा जिंदगी है वालेहाना और मेरे आगे से हट जाए जमाना। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

0: दिए जलाए बैठे हैं हम कब से उन्हीं निगाहों के। अरे दिए जलाए बैठे हैं हम कब से उन्हीं निगाहों के, अरे हो जाए ना वीरा गुलशन मेरी बाहों के। मजरू सुल्तानपुरी का कलाम था, तहजीब बर्मन की मौसीकी थी, बहुत लाजवाब। सुजाता फिल्म का नाम था, हम सोच रहे थे कल रात ये फिल्म कौन सी है। 1959 की थी, तलत महमूद की आवाज़ और मोहतरमा मन्नू रावल साहब ने इसकी फरमाइश भेजी सियाटल वाशिंगटन से।
1: एंड फिरोज जी, सेवरल लिसनर्स हैव रिसेंटली आस्क्ड इफ दे कैन सबमिट रिक्वेस्ट एंड हाउ टू सबमिट रिक्वेस्ट टू गीत बाजार। सो the best way to do it is to contact us on WhatsApp. The number is area code 919-999-8192. That's +1 if you're out of the country, 919-999-8192. That's the best on WhatsApp. And make sure when you submit a request to let us know your name and where you are calling from. And Afroz G. Usha Bajpai would like to remind our listeners that the amazing experience of Virangana is coming up just in less than 2 weeks on August 30th. A powerful story of courage live on stage. Brought to you by Four Dimensions Entertainment for an unforgettable English play celebrating India's bold and fearless women warriors. The featured women from India's history are Panna Dhai, Rani Chennamma, Mai Bhago, and Neera Arya. So Virangana celebrates courage, sacrifice, and the spirit of women who shaped history. This is coming up Sunday, August 30th at 3 p.m. in Stewart Theater at NC State. Tickets are limited. You can get your tickets on the Eventbrite website, which is 4de.eventbrite.com, and Bright is spelled B-R-I-T-E. See you there.
0: बड़ी बड़ी रुकावटों के पार करता हुआ कलाकार कहां से कहां पहुंच जाता है, और कभी कभी बड़े से बड़ा कलाकार रुकावटों में उलझ कर रह जाता है। तो दुनिया की जो रुकावटें देखती रह जाती हैं उनमें बहुत से कलाकार ऐसे भी हैं इस दुनिया में, जैसे कि लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुरैया मुल्तानेकर, के एल सैगल, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, और साथ में जनाब तलत महमूद, सुमन कल्याणपुर, कहाँ तक गिनाया जा सकता है। और फिर उसके बाद देखिए उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान, उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान, फिर मैं कहूँगा कि शमशाद बेगम, और मैं कहूँगा गीता दत्त, क्या बात है, उनको कैसे भूलूंगा, और सुरैया जो गाने वाली हैं, और साथ साथ वाणी जयराम को नहीं भूला जा सकता। इसके अलावा नाम मालूम कितने और भी हैं जो मुझे याद नहीं आ रहे और ना याद आएंगे, क्योंकि इतना बड़ा समंदर बॉलीवुड में समाया हुआ है और लहरा रहा है, ये समझिए आप। लेकिन इन सब को बनाया है पसंद करने वालों ने, इसमें कोई शक नहीं कि जो पसंद करने वाले हैं वही उन्हें वहां तक लेकर आए हैं। इसमें पसंद करने वालों का भी हाथ काफी है, और पसंद करने वाले अपना अलग क्लास रखते हैं। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश, 10 से 12 सुबह 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एंड वी आर योर होस्ट अफरोज ताज, जान कॉलवेल एंड रवि चिरकुड़ी। मोहतरमा फरीदा शेख साहेबा ने एक फरमाइश भेजी है भारत वर्ष की आज़ादी के लिए, वाह। और साथ साथ ये रमेश कालक ज्ञानम की खिदमत में भी यही नगमा पेश किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भी इसी की फरमाइश भेजी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा फरीदा शेख साहिबा एंड मोहतरम जनाब रमेश कालक ज्ञानम साहब, आपकी फरमाइश सराखों पर, और आप सबको देश का स्वतंत्र दिवस मुबारक हो बहुत बहुत। महेंद्र कपूर की आवाज़ में समातमाएँ, हालांकि मोहब्बत के पहले भी मिला है, समातमाइए, देखिए कितनी शैतानी से मैंने ये शेर लिखा है कि हालांकि मोहब्बत के पहले भी मिला है, जीरो से शुरू करने में कुछ और मजा है।
2: जो देश दूसरों के रहम और कर्म पर पल रहा हो वो देश मेरा नहीं।
3: मेरा तो है।
2: होगा, तुम उसे अपना समझते हो जो मदद लेता है, मैं उसे अपना कहता हूं जो मदद देता है। तुम लोग जमीन से पेट भर अनाज नहीं निकाल सके और लोग चांद तक पहुंच गए, है कोई मुकाबला?
3: जो चांद पे पहुंचे उनके सामने दुनिया ने सर झुकाया है।
2: सर झुकाने पर फक्र करते हो, है कोई ऐसी बात तुम्हारे देश की जिस पर के सर ऊंचा कर सको? नहीं माई डियर बॉय, तुम्हारे देश ने कुछ नहीं दिया। इंडियाज कंट्रीब्यूशन इज जीरो जीरो एंड जीरो।

0: क्यों है तुम्हें यूं प्यार में शर्माना जरूरी। समझ फरमाइए कि क्यों है तुम्हें यूं प्यार में शर्माना जरूरी, शायद वतन की रीत है दोहराना जरूरी। इंदी वर का कलाम, कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी, पूरब और पश्चिम वाज मेड इन 1970 की ये फिल्म है। महेंद्र कपूर की आवाज में, जैसे पहले अर्ज किया जा चुका है, मोहतरम जनाब रमेश काला ज्ञानम एंड मोहतरमा फरीदा शेख साहिबा की फरमाइशों पर। अगली फरमाइश पूर्णिमा गुप्ता की है, यानी के मोहतरमा पूर्णिमा गुप्ता साहिबा ने इस बार भी जरा मुश्किल ही चुना है, लेकिन हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है पूर्णिमा जी। आइए और इससे मुश्किल आप हमारा इम्तहान बनाइए। तो ये परीक्षा जरा आप खुद ही अपनी जुबान से सुनाएं।
1: मैं राग हूँ तू वीणा है।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब। मैं बस इससे मुझे एक नगमा याद आ रहा, बड़ा पुराना है, कि वो है जो तुम

चांद को तोड़ के ला दूं। अरे तू रूठ नहीं, अरे चांद को तोड़ के ला दूं, अरे तू रूठ नहीं, इससे बढ़कर तो मोहब्बत में कोई झूठ नहीं। नौशाद की मौसीकी थी मजरूह सुल्तानपुरी का कलाम, अंदाज वाज मेड इन 1949, मुकेश की आवाज, दोनों ही मुकेश की आवाज थी, एक मैंने मिसाल दी थी, दूसरी आपकी फरमाइश मोहतरमा पूर्णिमा गुप्ता साहिबा। दामोदर पांडे ने रामनगर बनारस से जो फरमाइश भेजी है वो भी हमने तो कभी सुनी नहीं भाई, लेकिन हमने कहा हैं ये कौन सी फरमाइश है। अब आप भी समाप्त फरमाएं और देखें कि ये आपने सुनी पहले से के नहीं। देखें इस पर ये शेर कैसा जाता है कि लिपटी हुई साड़ी में रुखे लाजवाब है, लिपटी हुई साड़ी में रुखे लाजवाब है, फूलों की पत्तियों में शायद गुलाब है। यू आर लिसनिंग टू गीत।

तारे तो बहुत देखे हमने बदन पर लिपटे। समाज फरमाइएगा, ये शेर शायद हवाला देता है किसी बहुत पुराने नगमे का कि तारे तो बहुत देखे हमने बदन पर लिपटे, बस सारी गुलाब जैसी और कांटे बदन पर लिपटे। फरमाइश थी मोहतरम जनाब दामोदर पांडे साहब आपकी हर फरमाइश सनाखों पर रामनगर वाराणसी से। और अब ये भी बता दूं, गुलूकार इनके थे संजू राठौर एंड रश्मि विराग। वाह, फिल्म का नाम धमाल नंबर 4। वाह, तो 3 धमाल जो पहले बन चुकी हैं वो हमने देखी नहीं अभी तक। 2026 में ये फिल्म बनी अभी अभी, और इसकी मौसीकी है तनिष बागची की। तनिष बागची का नाम तो सुना है अच्छा खासा, और कलाम है संजू राठौर का। इनका भी नाम बहुत काफ़ी सुना है, मोहतरमा ज्योति करीर साहिबा की फरमाइश रक्षाबंधन पर। रक्षाबंधन अगस्त 28th को है। अभी से मोहतरमा ज्योति करीर साहिबा ने फरमाइश भेजी है किशोर कुमार की आवाज़ के साथ, बड़ा प्यारा नगमा है। इस पर पहले मैं एक शेर बोल दूँ जो मैंने लिखा है, और फिर बाद में आप उस नगमे को समाप्त फरमाएं। दुनिया में नहीं पाया मेरे वतन का रिश्ता, अरे दुनिया में नहीं पाया मेरे वतन का रिश्ता, और त्योहार मनाता है भाई बहन का रिश्ता।

भाई करे बहन की रक्षा, जो देखो वो कहा किया। अरे भाई करे बहन की रक्षा, जो देखो वो कहा किया। पर मेरी तो बहन ने मुझको पाला पोसा बड़ा किया। आनंद बख्शी का कलाम, आर डी बर्मन की मौसिक, हरे राम हरे कृष्णा फिल्म का नाम, 1970 में ये फिल्म बनी। किशोर कुमार की आवाज के साथ मोहतरमा ज्योति करीर साहिबा की फरमाइश पर रक्षाबंधन सबको मुबारक हुए इन एडवांस, लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर रक्षाबंधन। मोहतरम जनाब चरणजीत लाल जी एंड मोहतरमा कंचन लाल जी की एपेक्स नॉर्थ कैरोलिना से एक और फरमाइश है, मुकेश लता की जोड़ी, क्या बात है वाह। तकदीर मेरी मेरे हम सफर से बनेगी, समाज फरमाइएगा कि तकदीर मेरी मेरे हम सफर से बनेगी, आराम वास्ता या मंजिल को रास्ता। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

0: Naira 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9 Naira mein kho jao Pakka Desi.
2: Bazaar every Sunday 10 to 12 noon. Carry to Karachi, Raleigh to Rajasthan, Mumbai to Mombasa, Naples to Nepal, Missouri to Missouri, Niagara to Agra, Alabama to Allahabad, La Jolla to Lahore, Nevada to Noida, Carolina to Kerala, Chicago to Sharpur, Louisiana to Louisiana, Oregon to Aurangabad, Tashkent to Kasgan, Utah to Eta, Texas to Texla, Virginia to Varanasi, Morrisville to Mauritius, Delaware to Delhi, Oklahoma to Oakland, Dublin to Dubai, Baltimore to Butler House, Georgia to Sharjah, Florida to Murazabad.
3: और अब हमेशा की तरह से मैं एक शेर आपकी नज़र करता हूँ और इस बार वही शेर आपकी नज़र करूँगा जो शेर मैंने पहला आपको सुनाया था, शायद आपसे मिस हो गया हो, ये पता नहीं। ऐ मन चली हवाओ जब बादलों में जाओ, ऐ मन चली हवाओ जब बादलों में जाओ, कहना वहाँ पे बरसो बस्ती जहाँ जली है। You are listening to Geek Bazaar Radio, Naira ki peshkash, we are your host Afroz Taj, John Caldwell and Ravi Chirikudi, or 10 se 12 subah, 10 se 12 sham.

0: The end from anywhere on your phone and other devices. The Radio Nair app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
1: मोहतरम जनाब राम पुरोहित ने हमको थोड़ा सा आइडिया दिया है, वो ये कि क्यों ना एक से गाने हम पेश करें जिसमें लोग मोहब्बत दीवाने और प्रेमी और क्या क्या नहीं और पागल खासकर उसके बारे में बात हो। तो आइए चलिए हम थोड़ी सी बात इस बारे में भी करते हैं, मगर याद दिला दें मोहतरम जनाब राम पुरोहित साहब की फरमाइश आई है चंडीगढ़ से। दुनिया को कहे पागल इतना भी नहीं जाना, अरे दुनिया को कहे पागल इतना भी नहीं जाना, पागल कहे जो सबको सबसे बड़ा दीवाना। You are listening to Geet Bazaar.

सुनाई देता हूँ जो मिलता है इससे कि दीवाना तो हूँ लेकिन इस शान का दीवाना, बाहर से हूँ शाहाना अंदर से फकीराना।

कहती नहीं किताब के काबिल मैं बड़ी हूँ। अरे कहती नहीं किताब के काबिल मैं बड़ी हूँ, पागल कहे जो खुद को पागल कहाँ रहा।

अनपढ़ और एक पागल दोनों मिले तो सोचा। अरे अनपढ़ और एक पागल दोनों मिले तो सोचा, पागल से रख उम्मीदें, अनपढ़ से नहीं कुछ भी। यू आर लिसनिंग टू गीक बाजार।

उल्फत हमें सिखाए अक्लो जहन के हरबे। समाज फरमाएं, उल्फत हमें सिखाए अक्लो जहन के हरबे, और उल्फत में जो है पागल बदनामियों के चरबे।

कहता न था मैं तुझसे मोहब्बत न कीजियो, अरे कहता न था मैं तुझसे मोहब्बत न कीजियो, अब ले मजा तू इससे रोके बहार में।

ऐसा कूदा नदी पे जाके, अरे ऐसा कूदा नदी पे जाके, नदी ले गई मुझे बचा के।

दीवाना कोई दौड़ के तुझसे लिपट न जाए। समाज फरमाए कि दीवाना कोई दौड़ के तुझसे लिपट न जाए, आंखें तेरी ओ पागल रखियो जरा बचाए। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

दिल ही तो है इंसान के पागल पने का राज। समाप्त फरमाइए ये अभी फ्रेश शेर आपकी नजर करता हूं। ये दिल ही तो है इंसान के पागल पने का राज, दिल क्या दिया कि अक्ल मेरी हाथ से गई।

मोहब्बत जो की हमने पागलपने तक, अरे मोहब्बत जो की हमने पागलपने तक, मोहब्बत अब पागलपना बन गई है।

मैं हूं प्रेम का घायल पंछी, दर्द वो क्या बतलाए। समाज फरमाइएगा, ये मिर्जा गालिब से थोड़ा सा इंस्पायर किया हुआ है, आपको याद आ जाएगा कि मैं हूं प्रेम का घायल पंछी, दर्द वो क्या बतलाए, कोई दुख को और बढ़ाए, दुख आसान हो जाए। खातिनो हजरात, बकौल गालिब साहब के कि ये सच है कि मुश्किलें कभी कभी इतनी हो जाती हैं कि आसान लगने लगती हैं या उसकी आदत पड़ जाती है। प्रोग्राम के शुरू से मेरा दिल धड़कता रहा कि प्रोग्राम अब ख़त्म हुआ, जब ख़त्म हुआ, लेकिन आखिरकार 2 मिनट में 2 घंटे गुजर गए और फिर जाने का वक्त आ गया। लेकिन सुकून मिल गया कि अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे। We are your host Afrostar John Colwell and Ravi Chirikuri. 10 से 12 सुबह 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। This is Geek Bazaar Radio Naira की पेशकश आपकी खिदमत में, आपकी हर फरमाइश सर आंखों पर, और हंसते हंसते जा रहे हैं कि आपका और हमारा प्यार का सिलसिला चल रहा है, यह हमें मालूम है। चलते चलते मैं आपको अपना ये शेर सुनाता जाऊं कि बड़ा दिल ये धड़का, बड़ी आंख रोई। अरे बड़ा दिल ये धड़का, बड़ी आंख रोई, पता ही न था हमें चाहेगा कोई। मोहब्बत जिंदाबाद।

0: इस रक्षाबंधन दीजिए एक अनमोल तोहफा जो सदा रहे अपनी बहन के दिल के पास। दिस रक्षाबंधन शॉप फ्रॉम आवर डिजाइनर कलेक्शन ऑफ गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी राज ज्वेल्स बंसल ग्रुप।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट फ्लेवरफुल समोसा चाट टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स
2: प्लानिंग योर बर्थडे वेडिंग ग्रेजुएशन पार्टी कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.
4: Harmeet, tujhe dekh ke pata hai kya lagta tha? Ki tu kuch bahut bada karega. कितना पोटेंशियल है तुझ में, क्या हो गया है, कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? What happened?

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: Armeed on the mic, writing what I feel.
1: इंडस्ट्री में ना कुछ कुछ एक्टर्स हैं जो कॉमिक रोल बहुत बहुत बहुत बढ़िया निभा जाते हैं. दो वो वर्सेटाइल हैं, लेकिन उनको हमने हमेशा कॉमिक रोल में इमेजिन किया है, देखा है, और जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं वी गेट अ लॉट ऑफ फन. भारती इज बैक ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 4 101.9 एफएम राली दुर्हाम पर. फिरोज नाडियाडवाला गेट्स द गोलमाल स्टार्स. श्रेयस तलपड़ियन, तुषार कपूर ऑन बोर्ड. द अक्षय कुमार, परेश रावल एंड संजय दत्त लेड वेलकम 3. श्रेयस तलपड़े एंड तुषार कपूर हैव ओवर द इयर्स एक्टेड इन द सेवरल कॉमेडी फिल्म्स, देयर मोस्ट आइकॉनिक बीइंग द गोलमाल फ्रेंचाइजी. बिफोर टीमिंग अप फॉर गोलमाल 5, श्रेयस तलपड़े एंड तुषार कपूर आर सेट टू रियूनाइट ऑन वेलकम टू द जंगल. They have a terrific role in the film and much like the Golmaal franchisee, this one too has an interesting dynamic for the two actors. क्यों एक्साइटेड होगी नहीं देखने के लिए भाई? मतलब कास्ट ही इतना बेहतरीन है, देखने में तो मजा आएगा ही. चलो फिलहाल एंजॉय करो आप आने वाले गाने. मिलेंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद. Only on radio.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सूरत बुरजातिया रिवील सिर्फ सलमान एंड माधुरी इज हम आपके हैं कौन विल गेट अ सीक्वल वाओ इंटरेस्टिंग. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And we are your host, director Suraj Barjatia. Recently revealed if fans will get a sequel of the film, to which Barjatia stated, I would not want to make a sequel with them. If there is a good script with characters that suits them, I would work with Salman and Madhuri. I think this is the great answer we could have. Because sequel ke baad mein na, us movie ka originality chala jata hai, aur charm chala jata hai. Matlab, you always get to compare ki pehla wala part achha tha, dusra utna nahi achha perform kar paya. Ab टाइम भी तो देखिए ना, पहले की बात कुछ और थी, पहले का सिनेमा कुछ और कहता था, अब वो सिचुएशन नहीं है. तो ओल्ड पुरानी चीज़ें अब के टाइम पे शायद काम ना करे, और अगर उसे मॉडर्नाइज भी कर दिया जाए तो फिर वहाँ पर बहुत सारे सेंटिमेंट्स भी हर्ट हो जाते हैं कि यार ओरिजिनलिटी को नहीं छेड़नी थी ये वो चीज़ें. सो इट्स बेटर टू नॉट मेक अ सीक्वल एंड नॉट रुइन थिंग्स. स्टेडियम

ऐसा है तो दिलों का इश्क ही तो देता फिरता है गवाही, वरना बता खुदा होने का सबूत क्या है।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

प्यारे है इंडिया से, यारी है मशीन से, उड़े चाहे आसमां में, दिल है जमीन पे।